0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माय का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबाने मक हवानो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल नियन इधर पॉइस हमने मेंसाजें माका तंबा जुविंतुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसे डारे ने हने सने आन हुसी तो तेवरिया बारा कीड़ा हुसी तेरे ना इंजुस क्रिस्टु निहाते ते हने सने ओला बेले दे नो हाडो मिहाव सेवा निहरा ओला हाडो मिहो ने मालुक सीरा तंबा ने मखाव दे हन से हाव ये ना मुरारा हाव दे ना ने सने ओला बेले दे नो हाडो मिहाव सेवा निहरा ओला हाडो मिसो सेदारे तंबा इंटरेस से हुसी इतने हमु तो कि इंटरेस से बस सोसेदारे ने मक इम्पोर्टेंट है अतुलोर सोसेदारे ने बा मुरिस दिया जुवेंटुरी तेंगे सही आजेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक ला दिया नु जुवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस दिया लॉस साला दिहन साला हाउ ये स्टेटमेंट तुझे आकर आते थे बस जोवेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ निया आमन सेबाइन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला लो उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पॉन्सिबिलिटी आरे हुरी कॉन्ट्रा निया रेस्पॉन्सिबिलिटी आरे मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा सेबाइन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमैच्योरिटी आरे कॉन्ट्रा निया रेस्पॉन्सिबिलिटी आरे मका साला कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत ने मक लॉस दिहन साला इदन मक इंपोर्टेंट ला बेले दिहन निया या कार्गो निया एलिट Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas jan ni los elade ni la vele nebe awa pela ba juventud sira tengi kuda hanu in critico critico ni importante tep teves la vele saifel alegria ba critico ni e uma how bia sate te anesane how hado mi liu how ni amigo sira critico ne duke hado mi emai denebe ke la critico tambo husi critico no contradisam di idea ma kamusu mudansa hamusu bot fonu sineba Nema koi na repete filo fali tena Jesus Kristu ni lefo. Hado mi luksu seda dene. Jesus dia nane sene ola bele dia no hado mi hau. Se benira ola hado mi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hado mi hau se benira mi la hado mi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hato netik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hado mi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan ne be makita muris ba ne susidan ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tamba ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktif. Ita labele harahun malu tamba problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone fini phone tenki kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional obrigado
0: ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin tolu hasis ang husi ita bos sira futa tirung husi amin tolu la haluha hato adeus i obrigada